0: संतान प्रास होए
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक मी तरे
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यों लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगर जोन कर पाए
1: संतन के दुखन तृष्णा में जले
0: संत के दुखन सब को चले
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी गाथा को ना है
0: नानक संत पावे ता ओ भी गत पाए
1: संत का निंदक मात दाए
0: संत का निंदक

0: संत का दुखी सदा सह काइये,
1: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइये,
0: संत के दुखी की पूजे ना सा,
1: संत का दुखी उठ चले निरासा,
0: संत के दुख न दृष्टे कोए,
1: जैसा पावे तैसा कोई होए,
0: पया कीर्तन मिटे कोए,
1: नानक जाने सच्चा सोए।

0: संगन चालस तेरे तना
1: क्या लपटा है मूरख मना
0: सुत मीत कुटुंबवार बनता
1: इते कहो तब कवन सनाता
0: राज रंग माया विस्तार
1: इते कहो कवन छुटकार
0: आस हस्ती रात

एक ओहकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याही है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नाउ निधि आवे ताए सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा प्यारिया चौहान साहब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमडिठ कीता तिना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी जिन्हां सिंह सिंघनियां ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चरवाए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिदके सां सवासां संग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु चेतावै चेतावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छा रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान प्रसाद दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत पात दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो श्री नानक साहिब समूह गुरधामां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभालता दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणिया दे माम नेताणिया दे तान नियोटिया दी ओढ़ने आसरिया दे आसरा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती है आप जी ने कृपा रहमत कीती सब तो पहला आप दियां प्यारियां संगतां ने संगती रूप सच्चे पातशाह जीओ सुखमनी साहिब जी दे जाप कीते हैं उपरंत सोदार रहरा साहब जी दे पाठ होए हैं समुची बाणी पढ़दियां सुनदियां भुल चुक दी खिमा बख्शना पढ़ी सुनी बाणी दा भाव आईयां संगतां दे दासरियां दे हिरदे ते वसाउणा सब दियां दर हाजरियां तिल फुल भेटावां प्रवान करनियां दरों घरों नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शनी परिवारां विच सुख शांति कारोबारां विच वाधे करने अरदास बेनती है संगतां वल्लों हरनाम सिंह दी चढ़दी कला वास्ते अरदास बेनती रहमतां प्रयत रखना हरजिंदर कौर दी याद विच परिवार वल्लों अरदास बेनती रहमतां प्रयत रखना बीबी ज्ञान कौर दे जन्मदिन ते सच्चे पातशाह जी शुकराना करदिआं तंदरुस्ती वास्ते अरदास बेनती चढ़दियां कला बख्शनियां सब दियां गुरमत अनुसार मनोकामना पूरियां करनी आप दे बख्शिया खजानिया विचों कड़ा प्रसाद दी देख सज के हाजिर है करी पाक साल सोच पवित्रा लाम भोग हर राय आप जी दा सीत प्रसाद जो छके नाम वाहिगुरु वाहिगुरु जपे श्रीमुख वाग दी बख्श करो सही प्यारे मेल जिना मिले आम दा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा
आज्ञा पही अकाल की तबै चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है।

सो इतनी सेवा प्रवान करनी आओ प्यार सत्कार सहित अमृतमयी बाणी दी विचार श्रवण करिए सत्कार योग ज्ञानी अगन सिंह जी उन्हां पासों प्यार सत्कार सहित श्रवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संग जी आप संगताने शाम दे दवाना विच हारी भर के गुरबाणी कीर्तन गुरु इतिहास दे लाहे प्राप्त कीते हन। सतगुरु साहिब जी रहमत करन सब दी दर हाजरी प्रवान करन धरो करो नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शन जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। राम नाम मन लागा जम लजाए कर भागा। प्रभ जी तू मेरो सुखदाता। बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विदाता। रहाओ नानक प्रभ अविनासी ताकि सेव न विरथी जासी। आनंद कर है तेरे दासा जप पूर्ण होई आसा। बिलावल महला पंचवा ताती वाव न लग गई पार। ब्रह्म सरनाई चौगिर्द हमारा राम कार दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एका लिवलाई। रहाओ राख लिए तिन रखन हार सब व्याध मिटाई। कह नानक कृपा पई प्रभ पे सहाई। सलोक जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत। अड़ा हो अड़ा तू नह छुट्ट है निकट न जाई हो दूत। श्लोक महला पंचवा मन मह चितवो चितवनी उद्यम करो उठ नीत। हर कीर्तन का आहरो हर देहो नानक के मीत। सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखिया करते का होए बीचारो। तित कर गावो सोहेला सिव रहो सिर जनहारो। तुम गावो हो मेरे निरभव का सोहेला हो वारी जित सोहेला सदा सुख होए। रहाओ नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवन हार। तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कमन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पाव हो तेल। देहो सज्जन असी सड़िया जो हो वै साहिब स्यो मेल। घर घर एहो पहुचा सदले नित पवन। सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन। राग आसा महला पहला छिया घर छिया गुर छिया उपदेश। गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए। रहाओ विस वे चसया कड़िया पहरा थिती बारी माह होवा सूरज एको रुत अनेक। नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन मैं थाल। राव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती। धूप मल्याण लो पवन चवरो करे सगल बन राए फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी। रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे काओ सहस मूरत नना एक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए तिस दै चानन सब मह चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस भावै सो आरती होए। हर चरण कबल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल देह नानक सारंक होए जाते तेरा नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बह भरिया मिल साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिब मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डंडौत पुन वड्डा है। रहाओ साकत हर रस साध ना जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा है। ज्यों ज्यों चल है चुबै दुख पाव है जम काल सह है सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडा है। अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहसोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम में ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंचवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला। ਈਹਾ ਖਾਟ ਚਲਹੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਆਉਦ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸਰਹਿਣਾ ਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਸ ਹੇ ਜਗਾਏ ਪੀ ਆਵੈ ਇਹੋ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਜਹੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਹਿ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ।

हम छूटे अब उना ते, ओए हम ते छूटे रहो मेरा तेरा जानता, तब ही ते बंधा गुर काटी अज्ञानता, तब छुटके फंदा जब लग हुक्म न बूझता, तब ही लो दुखिया गुर मिल हुक्म पछाणिया, तब ही ते सुखिया ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा, असमहला पंजवा सुख सहज आनंद कणा, हर कीर्तन गाओ गरह निवारे सत गुरु, ते अपना नाओ बलिहारी गुर अपने, सत सत बल जाओ गुरु विटोह वारिया, जिस मिल सच सुआओ राओ, सगुन अप सगुन तिस को लग है, जिस जीत न आवे तिस जम नेर न आवई, जो हर प्रभावे पुन दान जप तप जीते, सब ऊपर नाम हर हर रसना जो जपे, तिस पूर्ण काम पह बिन से परम मो गए, को दिसे न बिया नानक राखे पार ब्रह्म, फिर दुख न थिया आसा करनवा, महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चितवाऊ चितव सर्व सुख पावाऊ, आगे पावाऊ के ना पावाऊ, एक दातार सगल है जाचक, दूसर कह पै जावो हम मांगो आन ल जावो, सगल छतरपत एको ठाकुर, कौन सम सरलाव राव, उठो बैसो रह पीना साको, दर्शन खोज खुजावो, ब्रह्मादक सनकादक सनक सनंदन सनातन संत कुमार, तिनको मैल दुल पावो, अगम अगम अगाध बोध कीमत पर न पावो, ताकि शरण सतपुरख की सतगुर पुरख त्यावो, पहो

0: साच धर्म सिरच नहीं आवे सत सुनत सोहाया दीन दयाल कृपा प्रभ ठाकर भगत टेक हरनाया नानक आहे शरण प्रभ आयो राख लाज अपनाया
1: संग संग लपटाए बहु माया कर वादे जह जानो सो चीतन आवे अहूं बुद्ध भय आंदे मन बैरागी क्यों नारा दे काज कोठरी माए तू बसता संग सगल विखे की ब्या दे रहा मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे पल खिन शीजे अर जादे जैसे मीठे साध लुबाए झूठ धंध दुर्गा दे काम क्रोध अर लोभ मोह एह इंद्री रस लपटा दे दीप वारी पुरख बिधाते बहर बहर जन्मा दे जो पहु कृपाल दीन दुख पंजन तौ गुर मिल सब सुख लादे कहो नानक दिन रहन त्यावो मार काढ़ी सगले उपादे हो इउं जप्यो भाई पुरख बिधाते पहु कृपाल दीन दुख पंजन जन्म मरण दुख लाथे रहा दूजा सा महला पंजवा निमख काम स्वाद कारण कोट दिन सुख पावे

त्याग सगल सियाण पा आठ पैर प्रभ जाप मीत सखा सुहाए संगी उचग में अपार चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म गुण तेरा जस गाओ सर्व सुख वड्डी वड्याई जाप जीवै नानक नाओ आसा महला पंजवां उदम करो को रावो ठाकर पेखत साधु सांग हर हर नाम चुरावो रंगन आपे ही प्रभ रंग मन में राम नामा जाप

प्रीतम प्रभ भिखण का चाओ दया करो किरमे अपने को यह मनोरथ सुआओ तन तन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे बस किछ नाहे ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे जन्म जन्म के किल विख काटे मजन हर जन तूरा पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर आसा महला पंजवा अगम्या गोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग आप किरपाल किरपा प्रभ तारी सत गुर बख्शिया हर नाम कल युग उधारिया गुरदेव बल मूत मूड़ जे मुगध होते सबद लगे तेरी सेवरा तू आप करता सब श्रेष्ठ तरता सब मेरे हास माए धर्म राजा विस्माद हुआ सब पई पैरी आए सत युग त्रेता द्वापर भणिए कल युगी उतमो जुगा माए एह कर करे सो एह कर पाए कोई ना पकड़िए किसे थाए हर जियो सोई करै जे भगत तेरे जाचे हो तेरा बिरद कर जोड़ नानक दान मांगे अपने संतां दे हर दर्श रागासा महला पंजवां कर तेरवां एको अंकार सतगुर प्रसाद सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे राव महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पनीत सिंगारे जन्म पवंते नरक पड़ंते तिनके कुल उदारे कोई ना जाने कोई ना माने से प्रगट हर द्वारे कवन उपमा दियो कवन वडाई नानक खिन खिन वारे आसा महला पंजवां बावर सोए रहे राव मोह कुटंब विखे रस माते मिथ्या गहन गहे मिथ्या मनोरथ सुपन मन आनंद उलास मन सुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिलत मर्म न लहे कर कृपा राखे सत संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवां ते पदे वा प्रेम प्री राव कनक मानक गाज मोतियन लालन नह नहा नही राज न भाग ना हुक्म न साधन किछ किछ ना चाही चरणन सरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत हरी मिले प्रेम प्रियासा महला पंजवा गुरे दिखायो लोहे नाराव इते उते कट कट कट कट तू ही मोहे नाग कारण करना धारण धरना एक एक सोहे नाग संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोहे नासा महला पंजवा हर हर नाम अमोला यो सहज सुहेला राव संग सुहाई छोड़ न जाई इह गाया तोला प्रीतम पाई बाप मुरमाई भगतन काय हो ओला भगतन काय ओला अलख लखाया गुर ते पाया नानक हो हर का चोला आसा महला पंजवा अपने भगत नवाहे ठाकर आयो आहे राव नाम पदार्थ होए सकारत हृदय चरण बसाए एह मुगता एह जुगता राखो संत संगाए नाम ते आवो सहज समावो नानक हर गुण गाहे आसा महला पंजवा ठाकर चरण सुहावे हर संतन पावे राव आप गवाया सेव कमाया गुण रस रस गावे एक आसा दर्श प्यासा आनना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक

जिस सतगुर भेटिया सो जन निचल थिया। आसा महला पंजवा घर चौदवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद ओन ओन ओन वेला अपने प्रीतम स्यों लाग रहे रा जो ब्रह पावे जन्म न आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत रचै प्रभ संग मलीजै हो मन दीजै नानक नाम मिलै अपनी दया करवासा महला पंजवा मिल राम प्यारे तुम बिन तीरज को ना करे राव सिमरत शास्त्र भव कर्म कमाए प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै। आसा महला पंजवा घर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद विकार माया माद सोयो सूझ बूझ न आवे पकर केसु जामे उठारियो तब ही घर जावे लोभ बिखिया बिखे लागे हिर वित चित दुखाही खिन भंगना के मान माते असर जाने नाही रहा वेद शास्त्र जन पुकारे सुने नाही डोरा बाजी अर मुका पछतायो मन पूरा

सोए काम न करया, ऐसो जग मोहयो गुरे दिखायो, तो नानक कीरत गाया। मान तान ताज सियानप सरन नानक आसा महला पंजवा, अपार गोविंद नाय साध संत मनाय, प्रयो पाए गुण गाए पंच नाद तूर बजाए रहा। कृपा पाए सह जाए दरसाए अब रातिया गोविंद सिंह, संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए, गुर ज्ञान मन दृढ़ाए, रसाए नहीं आए सह जाए, मन निधान पाए प्रभ तजी मने की काम करा। चिर चिर चिर चिर भया मन बहुत प्यास लागी, हर दर्शनों दिखावो मुहे तुम बतावो, नानक दीन शरण आए गल लाए। आसा महला पंजवा, को बिख मंगार तो रे आस प्यासे तो मो ब्रह्म ही ते हो रे रा, काम करो लो मान ए ब्याद छोरे, संत संग नाम रंग गुण गोविंद गावो, अनदनो प्रभ त्यावो ब्रह्म पीत जीत मिटावो, हिद नाम नानक मोरे। आसा महला पंजवा, काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम, हर भजन सफल

पायो पेड़ थान हव। तचुकी सगल कान लहन जस मथान हव। भय पावक पर प्राण हव। निज कर तिसे थान हव। हर रस रसे मान लाथी तिस बखान हव। नानक सह समायो रे मना सावरी महला पंजवा। हर हर हर गुणी हा जपिए।

कहो सोए हाव मिटे अंदेसिया हाव संत उपदेसिया मेरे मनाव तिस जन नाम सुख हा तिस निकट न कदे दुख हाव जो हर हर जस सुने हा सब को तिस मने हा सबल सो आया हा नानक प्रभ पाया मेरे मनाव आसा वरी महला पंजवा मिल हर जस गाइये हा परम पद पाइये हा वाको रस विदे हां ताको सगल सिदे हाण दिन जाग्या नानक वडभाग्या मेरे मना राव संत भगत होइये हां दुरमत खोइये हां दासे रेन होए हां व्यापे दुख न कोए हां भगतां सरण पर हां जन्म न कदे मर हां उस्तर से पए हां हर हर जिन जप लए मेरे मना साजन मीत तू हां नाम दुरड़ाए मुहा तिस बिन नाहे कोए हा मने अराध सोए हा निमख ना विसरिए हा तिस बिन क्यों सरे हा गुर कहो कुर्बान जाओ हा नानक जपे नाओ मेरे मना स्वरी महला पंजवा कारण करन तू हा वरना सुजे मुहा करे सो होइए हा सहज सुख सोइए हा धीरज मन पए हा प्रभ के दर पए मेरे मना रहा साधु संग में हा पूर्ण संजमे हा जब ते छुटे आप हां तब ते मिठे ताप कृपा धारिया हा पात रख बनवारिया मेरे मना इहो सुख जानिए हा हर करे सो मानिए हा मंदा नाहे कोए हा संत की रेन होए हा आपे जिस रखे हार अमृत सो चखे मेरे मना

ग्रसियो तसहुं दसहुं दिस तावत आसा लागयो तन की रहाओ सुख के हेत बहुत दुख पावत सेवत का सेव कर

जिन सब थापी थापि उथाप सर्ब निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप। गो तू पर सागर मानक हीर तू निर्मल सच गुणी गहीर सुख माने पेटे गुरपीर एको साहेब एक।

जग उपजे बिनसे पत खोए, गुरमुख होवै बूझे सोए। मुगो भो मोला भार फार, अटल अछल गुरमति धार। भाई मिले भावे पैकार, नानक नीच कह बिचार। आसा महला पहला, एक मरे पंचे मिल रोवै। हौमे जाए शब्द मल तोवै, समझ

करण कार सबसे सिर तू ही राव। मुए को रुवे दुख कुए सो रुवे जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए। आपे करता करे सोए, जीवत मरना तारे तरना। जय जगदीश परम गत सरना, हौं बलिहारी सत गुर चरना। गुर बोहत शब्द पै तरना, निरभउ आप निरंतर ज्योत। बिन नामे सूतक जग छोत, दुर्मत बिन से क्या कह रोत। जन्म मुए बिन भगत सरोत, मुए को सच होवत मीत। त्रै गुण रोवे नीता नीत, सुख दुख पर हर सहज सुचीत। तन मन संपो कृष्ण प्रीत, पितर एक अनेक असंख। कर्म धर्म बहु संख, कर्म धर्म बहु संख असंख। बिन भय भक्ति जन्म बिरंथ, हर गुण गावे मिल परमानंद रंथ। वामरे मारे पी आप उपाय थाप उथाप। सेठ उपाय ज्योति हूं जात, शब्द विचार मिल नहीं प्रात। सूत के अगन पखै जग खाए, सूतक जल थल सब।

रामचंद्र फल पाया राम नाम त्याया राम नाम गुण गाए दुर्मत कबद गई शुद्ध हो राम नाम लाए सफल जन्म श्री सवा जित राम नाम प्रगास्या नानक हर भज सदा दराती गुरमुख निज करवास्या।

संचि नाडु बिना जाई राम नाम इस जग में तोला जम काल नेड़ न आवे नानक गुरमुख राम प्रसादा कर कृपा आप मिलावे रामो राम नाम सचे सत गुरमुख जानिया राम सेवको गुर सेवा लगा जिन मन तन अर्प चढ़ाया राम।

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु।

वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे
गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ गुरु आ

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु।

साहेब जी गोड़ी सुखमनी महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुरे नमे जुगाद गुरे नमे सतगुरे नमे श्री गुरुदेव नमे अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल क्लेश तन माहि मिटावो सिमरो जास विसंबर एकै नाम जपत अगंत अनेकै वेद प्राण सिमर सुधाख्यर किन्ने राम नाम एक अख्यर किनका एक जिस जीव सावे ताकि महिमा गनी नावे कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना के मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्व नाम वसे प्रभ कै सिमरन दुख जम नसे प्रभ कै सिमरन काल पर हरे प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरे प्रभ सिमरत कश बिघन न लगे प्रभ कै सिमरन अंदर जागे प्रभ कै सिमरन पाओ नाम व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै प्रभ का सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होय सो भला प्रभ कै सिमरन सुफल भला से सिमरे जिने आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा मुझे प्रभ कै सिमरन सब के सजय प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम हृद माए समाए प्रभ जी बसे साध की रसना नान जन का दासन दसना प्रभ को सिमरे से तनवंते प्रभ को सिमरे से पदवंते प्रभ को सिमरे से जन परवान प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे प्रभ को सिमरे से सुखवासी प्रभ को सिमरे सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगेर वाला प्रभ को सिमरे से परोपकारी प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरे तिने आत्म जीता प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरे तिने अंध कनेरे प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपा ते आन दिन जाग नान सिमरन पूरे भाग प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभ कै सिमरन कबू न झूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज सुमानी प्रभ कै सिमरन निश्चल आसन प्रभ कै सिमरन कमल विगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार

कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद पाए। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौकुंड जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन क्यों सगल कारा हर सिमरन मैं आप न कारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ नाथ संत माहरी आयो नानक प्रभ साथ। अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत ना भाई मनुहा नाम तेरे संग सहाय। जय महा भयान दूत जम दल ता केवल नाम संग तेरे चले। जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम किन माए उधारी। अनक पुन्न है चरण करत नहीं तरे हर को नाम कोट पाप पर हरे। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोरी बंधन परे हर का नाम जपत निस्तरे। अनक माया रंग तिख नाम बुझावे हर का नाम जपत गावे।

सगल घटाको देवो दान करन करावन हार स्वामी सगल घटाके अंतर जामी अपने गद मिल जान आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्त तुमते होए नानक अवर न जान सकोए।

रतन त्याग कौडी संग रचे साथ छोड़ झूठ संग मचे जो शरणा सो अस्थिर कर माने जो होवन सो दूर पराने छोड़ जाए तिसका शर्म करे संग साए तिस पर हरे चंदन ले उतारे तोये गर्त प्रीत पसम संग होए।

करतूत पशु की मानस जात, लोग पचारा करे दिन रात। बाहर भेख अंतर मल माया, सब सुनाई किस करे छपाया। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुहान। अंतर अगन बाहर तन स्वाहा, गल पाथर कैसे तरे अथाह। जाके अंतर बसे प्रव्याप, नान ते जन सह समात। सुने अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गै ले निभावे। काम बजारत बूझे डोरा, निस्कहिए तो समझे भोरा। काम विष्ण पद गावे, गोंग जतन करे तो भी सुरभंग। कै पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तू आस गवन। करतार करना मैं दीन बेनती करे, नान तुमरी कृपा तरे। संग सहाई सुहा विनचीत, जो बहराई तासो प्रीत। बलुआ के गृह भीतर वसे, अंध खेल माया रंग रसे। दृढ़ कर माने मने प्रतीत, काल ना आवे मूड़े चीत।

मन कछ बौर सावले अग्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे बौर उसका विश्वास न होवे। जिसकी बस्त से आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसते चौगुण करे निहाल। नानक साहेब सदा दयाल। अनक बांध माया के हे सर्ब होवत जान नेद बिरकी छाया सिम रंग लावे। ओ बिन से ओ मन पछतावे जो दी से सो चालन हार। लपट रे उत अंदार बटाओ से जो लावे ने ताको हाथ ना आवे के। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाए। मिथिया तन तन कुटुंब सवाया मिथिया हमे ममता माया। मिथ्या राज जोवन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता। मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या आप सुपर करत गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने मिथ्या अस्त पर दर को हिरे। मिथ्या नेत्र पेक्ष परतिरिया रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चन पर विकार को धावे मिथ्या मन पर लो लुभावे। मिथ्या तन्नी पर उपकारा मिथ्या वास लेदि विकारा।

साध के संग न मनते विसरे साध संग सर्प निस्तर है साध के संग लगे प्रमीठा साधु के संकट का डिठा साध संग पे आज्ञाकारी साध संग गत पे हमारी साध के संग मिटे सब रोग नान साध पेटे संजोग साध की महिमा वेद न जाने जेता सुने देता बख्याने साध की उपमा तय गुण तय दूर साध की उपमा रे भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंचे ऊंची साध की शोभा मूंचते मूंची साध की शोभा साध बने आए नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे एक बिन कोए नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्पदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल लेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोग जैसे सूर सब को सोग ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्टमान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कह धीरज एक ज्यो बसदा को खोदे को चंदन ले ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नान ज्यो पाव का सह सुहाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह मनोय प्रकाश जैसे तारे ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सदर समान ब्रह्म ज्ञानी के नायो मान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा मन अपने है सबते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रव्याप करे

ब्रह्म ज्ञानी कै बसे प्रसंग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत, ब्रह्म ज्ञानी अंबुत त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद।

ब्रह्मज्ञानी एक संहिता ब्रह्मज्ञानी का हुए चिंत ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रव्याप ब्रह्मज्ञानी का बट प्रताप ब्रह्मज्ञानी का दस बट भागी पाई है ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाई है ब्रह्मज्ञानी को खोज है महेश्वर नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्मज्ञानी के सगल मन माहे ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्मज्ञानी को सादेश ब्रह्मज्ञानी का कथे न जाए दाखर ब्रह्मज्ञानी सर

ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी उपर हाथ।

श्लोक मोरधारे जो अंतरनाम सर में पेखे भगवान निमख निमख ठाकर नमस्कारे नानक ओ अपरस सगल निस्तारे अस्परी।

जगदीश जियो पिंड सब दिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बनते आप बनाई नानक जीवे देख बटाई इसका बल नाई साथ कर्ण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो ज्योतिष भावे सोई फुनथियो कबू ऊंच नीच में बसे कबू सोग हरक रंग से कबू निंद चिंद व्योहार।

भिखारी नीच का साजा कहूं अब कीर्त में आवे कहूं भला भला कहावे ज्यों प्रभु राखे तिवी रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कबू होए पंडित करे व्याख्यान कहूं मोहन धारी लावे ध्यान कहूं तर तीर्थ स्नान कहूं से साधक मुख ज्ञान कहूं कीट हाथ पतंग हुए जियान जोन परमे परमिया नाना रूप जन स्वाकी दिखावे ज्यों प्रभु पावे तिवे नचावे ज्योतिष पावे सोई होए नानक दूजा न कोए कहूं साध संग देव पावे उस स्थान ते बोर ना आवे अंतर होए ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं मिनास मंथन नाम रते एक रंग सदा से पार कह संग ज्यों जल में जलाए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नान प्रभु कह सत गुरबान श्लोक सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नान गर्म गले

जतन करे आत्म नहीं दरवे हर दर के को कैसे गवे आप उसको जो भला कहावे तिसे भलाई निकना आवे सार्व की रेण जाका मन होए कौ नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कस होए तब इसको उसको ना ही कोए जब वे जाने मैं किस करता तब लग गर्व जोन में फिरता जब तारे को बैरी मी तब लग नेचन ना ही चीत जब लग मोह मगन समाए तब लग धर्म रहे देश जाए प्रभु कृपा दे बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे सहस खटे लग कोट धावे तृप्त ना आवे माया पाछे पावे अनक भोग विख्या के करे न तृप्तावे खपका मरे बिना संतोख नहीं को राजे सुबन मनोरथ फिरते सब काजे नाम रंग सब सुख हुए वडभागी किसे प्राप्त हुए कर्ण करावण आपे आप सदा नानक हर जाप कर्ण करावण करने हार इसके आद काम विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आपस हो जो किस किन्नो सो अपने रंग सब ते दूर सबू के संग बुझे देखे करे विवेक आपे कापे अनेक मरे ना मिनसे आवे ना जाए नान सदीर असमाए आप उपदेश समझे आवे आपे रचिया सबके साथ आप कीनो आपन विस्तार सब किस का ओ करने हार उसते भैन कहो किस होए तां तनंतर एक कैसो है अपने चलत आप करने हार को तो करे रंग पार मन में आप मन अपने माए नान कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सत सब की

का सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माय समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पाद सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाय विश्वास सत नान गुरते पाई सत वचन साधु उपदेश सत जन जाके हृदय प्रवेश सत निरत बूझे जे कोए नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसके शिष्य कर निहार और नमूज करत विचार करते कीमत न जाने किया नान जो तिस भावे सो वर्तिया विस्मन विस्म पै विस्माद जिन बुझिया तिसाया स्वाद प्रभ के रंग राजन रहे गुर के वचन पदार्थ लहे ओए दाते दु कट नार जाके संग तरे संसार जन का सेवक सोबड़ भागी जन के संग एक लिव लागी

तिस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक सात पुरख जन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसके संग सिख उदरे नानक हर गुण गाओ अशपरी। सतगुर सिक्की करे बिरतपाल सेवको गुर सदा दयाल सिक्की गुर दुरमत मल हिरे गुरु बचनी हर नाम चिरे सतगुर सिक्के बंधन काटे गुर का सिक्के विकार ते हटे। सतगुर सिको नाम धन दे गुर

साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगले इशार हर हर नाम कमावना नानके धन सारस्परी संत जन अमल करो विचार एक सिमर नाम आधार और भाव समीत विसार चरण कमल हृदय में और धारो कण कण सो प्राव समर्थ दृढ़ कर गह हो नाम रबाते तम संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माए सर रो नान मिट जाए जिस धन को चार कुंटर धावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सो को निदबाशे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा भजर की सरनी अनको भावी रोग न जाए रोग मिटे हरे औख लाए सर निधान में हर नाम निधान जप नानक दर गए प्रवान मन पर बोधो हर के नाए दै दिस्ताव ते आवे ठाए ताको बिघन लागे कोए जाके हृदय से हर सोए काल तारती ठंड हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख भाओ भाओ विनसे पूर्ण हो आस भगत पाए आत्म प्रकाश तित कर जाए वसे अवनासी को नानक काटी जम फासी तत्व विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा

भक्त हैं आप, जय बसरे बसार संत प्रताप, दो उपाका आपे तनी उनकी शोभा, उन्हों बनी आपे कौतक करे नन चोज, आपे रस भोगिन जो जिस पावे तिस आपन नहीं लावे, जिस पावे तिस खेल खिलावे।

कर्म है, अपर्म है, अदित है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, पर्यंग पर्याछंद, नमो सर्वमाने समाहति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेहवे।

प्रमविदे नमो सहस्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगे स्रम परम जुगते नमो नित्य नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशु धर्मे

राज है, गणि मुल्क राज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, परभुगत प्रभा है, सुजुगत सुदा है, सदैव स्वरूप है, अभेदी रूप है, समस्त पराज है, सदा सर्वसाज है।

विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी न मे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी रूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे।

हुसन अल जमाल है, गनी बोल के राज है, गरीब बोल निवाज है, हरी फुल सिकान है, हिरासल फिकान है, कलंकंग परनास है, सुबह तोल निवास है, अगंजल गनीम है, रिजय रहीम है, सुबह तल जुबा है के साहेब किरा है।

क्या तुझ कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद श्री राजा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया। कह नानक केहो शरीर परवान हुआ,

पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विचार परखन का प्रगड़ाक सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चितलाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी नानक अंतरंज अपनी हरता के पारावार आप कराए साक्ति फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरियां चुरे चुरे बिस्यार आप कराए करे आप हों कैसे करी पुकार नानक करना जिनकी अवृत सही करने सार।

जो तू दे तही अत्रैपते आन न कत हो ताव। सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी, सगल रेण होए रही है, साधु संगत होए प्राप्त, ता प्रभ अपना लहिया। सदा सदा हम छोरे तुमरे, तू प्रभ हमरो मीरा, नानक बारक तुम मात पिता, मुख नाम तुम्हारो कीरा। टोडी मोहल्ला पांजवा, घर दूजा दोप दे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मांगो दान ठाकर नाम, अवर कछु मेरे संग ना चाला, मिले कृपा गुणगाम रहाओ। राजमाल अनेक भोग रस, सगल तर वरकी शाम, ताए ताए बो बिद को तावै, सगल निरार्थ काम। बिन गोबिंद अवर जे चाहो, दिसे सगल बात है खाम।

हर अंत छड़ावन हारा जाके हिरदे बसिया मेरा हर हर ते जन को करो नमस्कारा कर कृपा हर कृपा ते पाइए हर जप नानक नाम अधारा बैराड़ी मोहल्ला चौथा जप मन हर हर नाम नित तिहाए जो इच्छे सोई फल पावे फिर दुख न लागे आए रहाओ सो जप सो तप सा भरत पूजा जित हर सो प्रीत लगाए बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी एक खिन में बिसर सब जाए तू बेअंत सर्ब कल पूरा किस कीमत कही ना जाए नानक सरण तुम्हारी हर जियो भावे तिवे छड़ाए राग बैराड़ी मोहल्ला पांजवा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत जना मिल हर जस गायो कोड़ जन्म के दुख गवायो रहाओ जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम दवायो सर्ब सुख हर नाम वडाई गुर प्रसाद नानक मत पाई राग तिलंग मोहल्ला पहला घर पहला

तो दर्शन की करो समाहे, मैं दर मंगत भीख्या पाए रहाओ। केसर कुसुम मृग में हरणा, सर्ब शरीरी चढ़ना, चंदन भगता जोत अनेही, सर्वे पार मल करना। कह पट भांडा कहे ना कोए, ऐसा भगत वर्ण मैं होए। तेरे नाम निवे रहे लेवलाए, नानक तिन दर भीख्या पाए। तलांग मोहल्ला पहला घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एह तन माया पाहिया प्यारे, लीतड़ा लाभ रंगाए। मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे, क्यों तन सेजे जाए।

छिन छिन औद बिहात है, फूटे घट ज्यो पानी रहाओ। हर गुण काहे न गावहि, मूर्ख अज्ञाना, झूठे लालच लाग कै न मर्म पछाना। अजू कछ बिखरियो नहीं, अजू कछ बिगरियो नहीं, जो प्रभ गुण गावै कहो नानक ते भजन ते निरपह पद पावै। तलंग मोहल्ला नौवां, जाग लिहो रे मना जाग लिहो, कहां गाफल सोया, जो तन उपजा संग ही सो पी संग ना होया। रहो मात पिता सद बंद जन, हित जा सो कीना, जियो छूटो जब देह ते डार अगन मैं दीना। जीवित लो व्यवहार है, जग को तुम जानो, नानक है।

राग सूही मोहला पहला चौप दे घर पहला भांडा तुहे बैस धूप देवो तो दुधे को जावो दूध करम पुर सुरत समायण होय।

जिसके अंतराज मनसो नरक पाती हो वसवान जो जाना मैं जो वंशो उत्विष्टा का जंत आपस को कर्म बंद कहावे जन्म रह भोजन परमावे तन भूम का जो कर मानसो मूर्खा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे नानकिया मुक्ता के सुख पावे धनवंता हो कर करवावे तिन समान को संग्रह जाए वो लश्कर मान के ऊपर करयास पल भीतरता का होय विनाश सब त्याग जाना बलवंत खिन में हो जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जा का मिटे मनसो जन नानक तिरगा प्रवाण कोट क्रम करे हो तारे श्रम पावे सगले विरथारी अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरग फिर फिर अवतार अनक जन करे तम निंद्रवे हर दुर्गा को कैसे गावे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व किरण जा का मन होय कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख नहीं कोए जब ये जाने मैं किच करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब थारे कुबेरी मीत तब लगने चलना ही चीत जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे सह सकटे लख उठता वे तिप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग विख्या के करे न तिपता वे कप कप मरे बिना संतोख नहीं को राजा सपन मनोरथ बिरथे सब काज नाम रंग सर्व सुख होए बटभागी किसे प्राप्त होए करण करावणे आप ही आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावण करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृश्य करे तैसा हो आप ही आप प्राप्त हो जो कुछ कीनो स्वप्न रंग सब ते दूर सब के संग बुझ जा देखा करे वे के आप है कप है अनेक मर न बिन से आवे न जाए नानक साधी रह समाय आप उपदेश समझे आप ही आप रचे सबके साथ आप कीनो अपन विस्तार सब किश उसका ओ करने हार उस ते पिन कहो किश हो आप मन तंत्र के सोए अपने चलित आप करने हार कौतक करे रंगे पार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किन्या वकियानी सच सच सत सब कीना कोट मदे किने विरल चीना भला भला भला तेरा रूप यत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण वकियानी पवित्र पवित्र पवित्र पनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत

कह जय अविक्त भगत है आप, जय पसरे पासार संत प्रताप, दहु पा काया पेतनी उनकी सो पान क्यों बनी, आप कौतक करण चो जय फिर कन्या जोग, जिस पावे तिस अपन न लावे, जिस पावे तिस खेल खावे, भीष्मारता गणत तोले, ज्यों बोलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक, जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार, नानक एको फसरिया दूजा कह दिष्टार स्प्रदि, आख दे आप सुन हार आप का बेसार, जब दिस पावे ता सिष्ट उपाय, अपने पाने ले समाए, तुम ते पे नहीं केश होए, अपन सो सब जगत प्रवाए, जाको प्राप्त जीवा बजाए, सत नाम सोई जन पाए, सो समदर्शी तत् का बीता, नानक सगल सृष्ट का जेता, जी जंतर सब ता कह हाथ, दीन दयाल अनाथ कुनाथ, जिस राख तिस कोई न मार, सो मुआ जिस मन अनुसार, तिस तजर खां को जाए, सब श्री कंजन राय, जी की जू चक है सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ, गुण निधान बेअंत पार, नानक दास सदा बलिहार, पूर्ण पूर है दयाल, सब उपर होवत कृपाल, अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जा मेरे व्याप, प्रत पाल जी अनुभव पांत, जो जो रचियो सो तिस अत्यात, जिस पावे तिस लय मिलाए, भगत कृपा के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मान्या, करुण हार नानक के जाने, जन लगारे कहनाए, तिस की आसन बिरथि जाए, सेवको सेवा बनियाई, हुक्म बूझ परम पद पाई, इस देव परणी विचार, जा कै मन वसै निरंकार, बंधन तोर पए निर्वैर, अंधन पूजा गुर के पैरे, लोक सुखिए परलोक सहेले, नानक हर प्रभु आपै मेले, साथ संग मिल करो आनंद, गुण गावो पर परमानंद, राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देखा करो उदार, अमृत वचन के गुण गाओ, प्राण तरण का एह सो आठ पैर, पप एको नेरा, मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा, सोने उपदेश बसावो, मन निचे नानक फल पावो, अलत पल दुल्यो सवार, राम नाम अंतर उतार, पूरे गुर की पूरी दिखा, जिस मन बस है ते सहच परेखिया, मानता नाम च भोले बुलाए, दुख दर्द मंति पौ जाए, सच व्यापार करो व्यापार, दरगा निवै खीप तुम्हारी, एका टेक रखो मन माहे, नानक भोर न आवै जाहे, तिस ते दूर कहाँ को जाए, उभरे रखन आरथ आए, निर पहो जपै सगल पहो मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुट्टै, जिस पर वाख्या तिस नाही दुख, नाम जपत मनो असुख, चिंता जाए मिटै अहंकार, ते जन को कोई न पहुँचन हार, सिर ऊपर ठंडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पे खत उदर श्रेष्ठ, चरण कमल जाकी अनूप सफल, दर्शन सुंदर रूप, धन सेवा सेवक परवाने, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन वसै सोहोत निहाल, ताके निकट नयावत काल, अमर पए अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया, श्लोक, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रगास अस्पदी, संत संगंत पवडीठा, नाम प्रभु का लाग मीठा, सगल समग्री एक स्कट माहे, अनकरंग नाना दिष्टा है, नव निधि अमृत पाव का नाम, देही मैं इसका विश्राम, सुन समाध न तैनात, कह न जाये चर्ज विस्माद, तीन देखे आज से आप दिखाए, नानक जे जन सो जी पाए, सो अंतर सो बार अनंत, घट घट व्यापरिया भगवंत, तरण माए आकाश प्याल, सर्वलोक पूरन प्रतपाल, बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी वे संतर माहे, चार कुंड दिस समाहे, तिस ते पे नहीं कोटाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ, वेद प्राण सिमरत में देख ससीर, सूर नक्षत्र में एक, बाणी प्रभु की सबको बोले, आप अडोल न कब हूँ डोले, सर्व कला कर खेल अखेल, मोल न पाई गुण अमोल, सर्व ज्योत में जाके ज्योत धार रहे हो, स्वामी होत पोत, गुर प्रसाद ब्रह्म का नाश, नानक तिन में ए विश्वास, संत जना का पेखण सब ब्रह्म, संजना का हृदय सब धर्म, संजना सुनो सब वचन, सर्व व्यापी राम रंग रचन, जिन जता तिस की रह, सत जन साधु सब कहत, जो जो होए सो ही सुख मान, करण करावन हर पव जाने, अंतर वसे बार पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस पाप से सगली उत्पत, तिस पावै ता करे विस्तार, तिस पावे ताय कंकार, अन कला लगी न जाए, जिस पावे तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कही है, दूर आपे आपा भरपूर, अंतर गज से आप जनाए, नानक ते जन आप जाए, सर्वभूतिया वरतारा, सर्व नैण आपे खनारा, सगल समग्री जा का तना, अपन जा साफ ही सुना, आवन जान एक खेल बनाया,
आज्ञाकारी की नी माया सब के मादा लिप्त हो रहे जो कुछ करना कहना स्वापे कहे आगे आवे आगे जाए नानक जा पावे तल हे समाये इस ते हो इस नाही बुरा और कहो किने कश करा आप भला कर तू तातनी की आप ही जान है अपने जी की आप सच तारी सब साचोत होता अपन संग्राच ताकि गत मित कहीं न जाए दूसरो थो जी भाई तिसका की असा प्रवान गुर प्रशान उनके जान जो जाने ते सदा सुगोए आप मिलाए लहे प्रासोए ओ धनवंत कुलवंत पदवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया जन आवन गाय सुहाओ जन कै संग चित आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार श्लोक।

पिता माता की आशीष, निमख न बिसरो तुम कौ हर हर, सदा पजू जगदीश। सतगुर तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत,

प्यारा हर रंग न कबहू लहता बिलावल महला पंजवा निंदक ऐसे ही चर परी है एह निशानी सुनो तो पाई ज्यों कालर पीत गिरिय रहाओ जाओ देखै छिदर तौ निंदक उमा है पलो देख दुख भरी है आठ पहर चितवै नहीं पहुंचे बुरा चितवत चितवत मरिय निंदक प्रभु भलाया काल नेरे आया हर जन स्यों बाद उठरी है नानक का राखा आप प्रभु स्वामी क्या मानस बपरे करिय बिलावल महला पंजवा ऐसे काहे भूल परे करह करावे मुकर पावे पेखत सुनत सदा संग हरे रहाओ काच बिहंजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग खरे होवन कौरा अन होवन मीठा बिखिया मह लपटाए जरे अंधकूप मह परेओ प्राणी परम गुबार मोह बंद परे कह नानक प्रभ होत दयारा गुर पेटे काडे बाहा फरे बिलावल महला पंजवा मन तन रसना हर चीना पै आनंदा मिटे अंदेसे सर्ब सुख मोको गुरदीना रहाओ यान पते सब पई सियानप प्रभ मेरा दाना बीना हाथ दे राखे अपने को काहे न करते कछु खीना बल जावो दर्शन साधु के जेह प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर पारोस कहूं न मान्यो मन छीना बिलावल महला पंजवा गुर पूरे मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मह दीनो जन्म जन्म की

तन नानक दासन दास कहियत कहत है मोहे करहो कृपावा ठाकुर अपनी बिलावल महला पांचवा हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताके हृदय तर मन ध्यान रहाओ सिमर सिमर सिमर सुखदाता जाका किया सगल जहान रसना रहो एक नारायण साची दरगह पावो मान साधु।

राख लिए सतगुर की शरण, जय जयकार हुआ जगंतर, पाय ब्रह मेरे तारण, तरण रहाओ विश्वंबर पूर्ण सुखदाता, सगल समग्री पोखण भरण, थान थनांतर सर्ब निरंतर, भर बल जाई हर के चरण। जी जुगत वस मेरे स्वामी, सर्ब सिद्ध तुम कारण कारण, आद जुगाद प्रभ रखदा आया, हर सिमरत नानक नहीं डरण। राग बिलावल महला पंजवां, दुप दे कर अठवां, एक ओं

0: मन तुझ बिन जीवन सगल अकाथ रहाओ रंक तेराओ करत खिन पीतर प्रभ मेरो अनाथ को नाथ जल तगन महजन आप उधारे कर अपने दे राखे हाथ शीतल सुख पायो मन तिप तृपते हर सिमरत सरम सगले लाथ निद निदान नानक हर सेवा अवर सियाणप सगल अकाथ बिलावल महला पंजवा अपने सेवक को कब हूँ ना विसार हो और लाग हो स्वामी प्रभ मेरे पूर्व प्रीत गोविंद विचार हो रहाओ पतित पावन प्रभ बिरद तमारो हमरे दोख हृदय मत तार हो जीवन प्राण हर तन सुख तुम ही।
1: शांत बिलावल महला चौथा मंगल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हर प्रभ से जय आया मन सुख समाना राम गुर तुठे हर पापाया रंग रलिया माना राम वड भागियां सुहागणी हर मस्तक माना राम हर पव हर सुहाग है नानक मन पाना राम निमाण हर मान है हर पव हर आपे राम गुरमुख आप गवाया नित हर हर जापे राम मेरे हर प्रभ पावे सो करे हर रंग हर आपे राम जन नानक सहज मिलाया हर रस हर त्रापे राम मानस जन्म हर पाई है हर रावण वेरा राम गुरमुख मिल सुहागणी रंग होए कनेरा राम जिन मानस जन्म न पाया तिन भाग मंदेरा राम हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभ अगम दड़ाया मन तन रंग पीना राम भगत वछल हर नाम है गुरमुख हर लीना राम बिन हर नाम ना जीव दे ज्यों जल बिन मीना राम सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ की नाराम। बिलावल महला चौथा श्लोक। हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो मन वसै वड भाग गुरपुर वेखालिया नानक हर लिव लाग। शंत मेरा हर प्रभ रावण आईया हाँ मैं बिख जागे राम गुरमत आप मिटाया हर हर लिव लागे राम अंतर कमल परगासिया गुर ज्ञानी जागे राम जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड पागे राम हर प्रभ हर मन पाया हर नाम वधाई राम गुरपुरे प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम अज्ञान अंधेरा कटिया

समाई राम। तन हर प्रभ प्यार राविया, जन हर प्रभ पाई राम। जन नानक नाम विगसिया, हर हर लिवलाई राम। हम मूर्ख मुगध मिलाया, हर कृपा तारी राम। तन तन गुरु सबास है, जिन हम मैं मारी राम। जिन वडभागिया वडभाग है, हर हर उरतारी राम। जन नानक नाम सलाहे तू, नामे बलिहारी राम। बिलावल महला पंजवा छंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मंगल साज पया प्रभ, अपना गाया राम। अवनासी वर सुनिया, मन उपजया चाया राम। मन प्रीत लागे वड्डे भागे, कब मिलिए पूर्ण पत्ते। सहजे समाइए गोविंद पाइए, देहो सखिए मोहे मत्ते। दिन रहन ठांडी करों सेवा, प्रभ कवन जुगती पाया। बिनवंत नानक करहो कृपा, लहो मोहे लड़लाया। पया समाहड़ा हर रतन विसाहा राम। खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम। मिले संत प्यारे दया तारे, कथे कथ विचारो। एक चेती एक मन त्याए स्वामी, लाए प्रीत प्यारो। कर जोड़ प्रभ पै कर बेनंती, मिले हर जस लाहा। बिनवंत नानक दास तेरा, मेरा प्रभ अगम अथाह। साहा अटल गणिया पूर्ण संजोगो राम। सुखै समूह पया गया विजोगो राम। मिल संताए प्रभ त्याए, बने आचर्य जानिया। मिले कतर होए सहज टोए, मन प्रीत उपजी माइया। मिल जोत ज्योति ओत पोती, हर नाम सब रस भोगो। बिनवंत नानक सब संत मेली, प्रभ करण कारण जोगो। भवन सुहावड़ा धरत सुभागी राम। प्रभ कर आयड़ा गुरचरणी लागी राम। गुरचरण लागी सहज जागी, सगल इच्छा पुनिया। मेरी आस पूरी संत धूरी, हर मिले कंत विछुनिया। आनंद अणदिन वजै वाजे, अंग मत मन की त्यागी। बिनवंत नानक शरण स्वामी, संत संग लिव लागी। बिलावल महला पंजवा। भाग सुलखना हर कंत हमारा राम। अनहद वाजितरा तिस धुंदर बारा राम। आनंद अंदन वजै वाजे, दिन सरहन ओ महा। तह रोग सोग ना दुख व्यापै, जन्म मरण न ताहा। रिद सिद्ध सुधारस अमृत, भगत परे पंडारा। बिनवंत नानक बलिहार वन्या, पार ब्रह्म प्राण आधारा। सुन सखी सोहेलड़ी हो, मिल मंगल गावे राम। मन तन प्रेम करे, तिस प्रभ को रावे राम। कर प्रेम रावे तिसें पावे, एक निमक पलक ना त्यागिए। गै कंठ लाइए नै लजाइए, चरण रज मन पागिए। भगत ठगौरी पाए, मोह अनत कतहू न तावे। बिनवंत नानक मिल संग साजन, अमर पदवी पावे। बिसमन बिसम पई पेख, गुण अवनासी राम।
कर गै पूजा गही कट जम की फासी राम गै पूजा लीनी दास कीनी अंकुर अवधोत जनाया मलन मोह बिकार नाठे दिवस निर्मल आया दृष्टधारी मन प्यारी महा दुरमत नासी बिनवंत नानक पई निर्मल प्रभ मिले अविनासी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी।

पाले मरन लखाए मंडल में आए जीवन साजे माई एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई ना किसी का मीत ना किसी का पाई ना किसे बाप न माई प्रणवत नानक जे तू देवै अंते होए सखाई राम कली महला पहला सर्व ज्योत तेरी पसर रही।

तेरे आसमाए, अंतर सहसा बाहर माया, नैनी लाग सबाणी, प्रणत नानक दासन दासा, प्रतापेगा प्राणी, राम कली महला पहला, जित दर वसे कमन दर कही है, दरा पीतर दर कमन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कह, केन बेद सागर।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर के गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दासे होइ सहाय अर्जन हर गोबिंद नू सिमराऊं श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नाउन दया वे ताई सब थाई होइ सहाय दसवां पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय दसवां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार दा ध्यान तर के बलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां शहीदां मरीदां हठियां तपियां सिद कवाना जिन्हां नाम जपिया वंड की छकिया देख चलाई तेग बाही देख के अंडिठ कीता सचारियां प्यारियां दी कमाई दा ध्यान तर के बलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धार महे शीश दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लभाईयां चरखड़ियां ते चढ़े तानारियां नाल चरवाए सिखी सिदक किसां स्वासां संग निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तर के बलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तर के बलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी कहो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रिथ्या रियाज देग तेग फतेह बिरद की पैज रहे पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बंगे जगो जुगा टल धर्म का जयकार बलो जी सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत का रखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछूड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन सेवा संभालता दा दान प्यारी खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणियां दे माण सतगुरु नेताणियां दे तान दे ओटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ अरदास बेनती है लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु

पवित्र पवित्र जिन तू करया सकल जोन में तू सिर धरया अब तू सीज भावे नहीं सीजै कार्य सबर है मन प्रभ ते आईजै इहां उहां एक है ओही जत कद देखिए तत तत तोही तिस सेवत मन आलस करै जिस विसरै एक निमख नसरै हम अपराधी निर्गुण यारे नाग सेवा ना करमारे गुर पोहित बटभागी गुर बोहित बटभागी मिलिया नानक दास संग पाथर धरिया राम कली महला पंजवा।

दावा गन रहे हर बूट, मात गर्म संकट ते छूट, जाका नाम सिमरन पहु जाए, ना जाका नाम सिमरन सिमरत पहु जाए।

ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई रहाओ। सकल दुख का डेरा पन्ना संत धूर मुख लाई, पतत पुनीत किए खिन पीतरा ज्ञान अंधेर बन जाई। करण कारण सम्राट स्वामी नानक शरण आई, बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए। एक शब्द लिव लाई अंध गुप विख्या ते काढ़ियो, साज शब्द बन आई। जन्म मरण का सहसा चुका, बहुड़कत होना ताई। नाम रसायन एहो मन राता, अमृत पीत्र बताई। संत संग मिल कीर्तन गाया, निच

आपे मन हापे मलाय ग्रह ग्रह कंठ लाए तिस बिना नहीं जाए जियो बल जाए नानक सदा करते सब मैं रहया समाए जियो राम कली महला पंजमा राग राम कली महला पंजमा रोहन झुंझुंडा गाओ सखी हर एक त्यावो सतगुर तुम सेव सखी मन चंद्रिया फल पावो राम कली महला पंजमा रुति सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद कार्य बंधन प्रभ पार ब्रह्म बस

गुण रंग जाते तहंते जना जिनी एक मन त्याया सफ जन्म पया तिनका जिनी सो प्रापाया पुन दान ना तुल क्रिया का हार सर्व पापा हंत जियो बलवंत नानक सिम जीवा जन्म मरन रहंत जियो श्लोक उद्दम अगम गोचरो चरण कमल नमस्कार कथना जात उद्भाव सी नानक नाम हदार संत सरन साजन परो स्वामी सिमर अनंत सुकेते हरियाथिया नानक जप भगवंत संत रुत सरसब संत महा चेत विसाख

सुखत के हर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत कब मिलिए गुणतास जियो बिनकंत प्यारे नह सुख सारे हार कंगन त्रिग बना सुंदर सो जान चतुर व्यति सास बिन जस इतना ईति ओत दस अलोकन मिल मिलन की प्रभ प्यास जियो बनवंत नानक धार कृपा मिलो प्रभ।

त्रैन त्रैगुण हरे भय हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इस पुनी मन जप्या निर्मल मंत जियो बलवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तारकंत जियो सलोक संत सहाई जी के पवज तारन हार सते उचे जहनिये नानक नाम प्यार जन जान्या से तरे से सूरे से बीर नानक तिन बलिहार ने हर जप उतरे तीर संत चरण ब्राज सब उपरे मिटिया सगल कलेस जियो आमन जान दुख हरे हर भगत किया परवेश जियो हर रंग राते सहज माते तल न मनते बिसरे तज आप सरनी परे चरनी सर्व गुण जगदीसरे गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी आदि को आदेश जियो बनवंत नानक माया तारो जोगो जुगो एक वेस जियो राम कली महला पहला दखने ओंकार एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओंकार ब्रह्मा उत्पत ओंकार किया जन चत ओंकार सैल जोग भय ओंकार वेद निर्मले निर्मय ओंकार शब्द उदय ओंकार गुरमुख तरे हुनम अखर सुनो बेचार हुनम अखर त्रह बंसार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लेखन राम नाम गुरमुख गोपाला सहाओ ससे साब जग सहजो पाया तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन लै माणक मोती समझ सुझे पढ़ पढ़ बुझे अंत निरंतर साचा गुरमुख देखे सच समाले बिन साचे जग काचा तंदे धर्म तरे धर्मा पुर गुणकारी मन धीरा तंदे तूल पड़े मुख मस्तक कंचन भय मनूरा धन धरनी तर आप जोनी तोल बोल सच पूरा

रस गीत बाद नहीं भावे सुनिए गहर गंभीर गुवाया। गुर सच कहया अमृत लहया मन तन साच सुखाया। आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत पियाया। एको एक कहे सब कोई हमें गर्भ व्यापे अंतर बारे

का जाए। छिज दे खुले एक गंड चांद नेत देखे जग घंड धूप शाम जे शाम का जाने बंधन काट मुक्त करयाने छाया सूची जगत पुलाना लिखिया किरत तुरे परवाना।

शब्दी कर काज सार लहा साच न आवे तोटा। त्रैवण ठाकर प्रीतम मोटा ठाकर मनमा ठाकर मनमा रख उठाए ठक मोहि हवगन पछताए। ठाकर एक सबाई नार बहुते वेश करे कुड़ियार पार कर जाति ठाकर आई महल बलाई ठाक न पाई। शब्द सवारी सच शब्द सवारी सच प्यारी साई सुहागन ठाकर तहरी। डोलत डोलत हे सखी फाटे चीर सिंगार डैपन तन सुख नहीं बेंडेन बिन डर बिंठी डार। डरप मोई कर आपने दीठी कंतो सो जान डर रखिया। गुरे आपने निरपो नाम बखान डुगर वास तिखा कनी। जब देखा नहीं दूर तिखा नवारे शब्द मन अमृत पिया भरपूर। देह दे आख सब कोए जे पावे तदे गुरुद्वारे देवसी तिखा नवारे सोए। टंडुल टुंडत हों फ्री टाए टाए पमन करार पारे पारे टहदे टह पाए। औले निकसे पार अमर जाची हर मिले तिनके तिनके।